फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो धुआं था, तो उसने उससे और जमीन से फरमाया कि दोनों आओ, खा खुशी से खा ना खुशी से। उन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं।

और रात और दिन और सूरज और चांद उसकी निशानियों में से हैं। तुम लोग ना तो सूरज को सजदा करो और ना चांद को, बल्कि अल्लाह ही को सजदा करो जिसने उन चीजों को पैदा किया है, अगर तुमको उसकी इबादत मंजूर है।

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज इतवार है, मुहर्रमुल हराम के 5 और जून की 21 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथिर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के तहत तकनीकी सतह के मुजाकरात आज स्विट्जरलैंड में होंगे। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तकनीकी सतह के मुजाकरात में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हुए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म काहिरा में हैं, जहां वो इलाकाई मुल्कों के वज़राए खारजा के आज होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 73वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने बल्दियाती इदारों की सतह पर तआवुन में इजाफे पर इत्तेफाक किया है। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 6 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल मलेशिया में खेले जाने वाली तीसरी एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के हवाले से आज आला सतह के होने वाले मुजाकरात में शिरकत के लिए बर्गेनस्टॉक स्विट्जरलैंड रवाना हो गए हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान, कतर और अमरीका के आला सतह के वफूद मुजाकरात में शिरकत करेंगे। 17 जून 2026 को इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने के बाद ये पहले बाज़ाबता मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान और अमरीका के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमत अमल पर अमल दरामद की हिमायत और इसे आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी रखेगा। मुज़ाकरात के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामी जमहूरिया ईरान, कतर, स्विट्जरलैंड और अमरीका के शरीक वफूद के साथ दो तरफा मुलाकातें मुतवक्को हैं, ताकि खित्ते में मुज़ाकरात और पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्तकिल अज़्म का इआदा किया जा सके। मुज़ाकरात में सहूलतकार की हैसियत से पाकिस्तान का किरदार पूरे बहरान के दौरान उसके उसूली, मुतवाज़न और तामीरी नुक्ता नज़र को उजागर करता है, जिसमें अमरीका ईरान मुज़ाकरात के गुज़श्ता दौर की मेज़बानी और मुसलसल सिफारती राबते शामिल हैं।

0: Hey, we'll be back after this short commercial break.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: 101 FM।
3: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE Power से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE Power, the ultimate power solution.
4: हमसे है रोशन ये जहां,
5: हमसे है

तो जब भी बोल तू बोल रे बंदे पहले उनको तोल। जब भी बोल तू बोल रे बंदे पहले उनको तोल, क्योंकि वो बहुत अनमोल है लेकिन बोल ही खोले पोल।

0: be back after this short commercial break.
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: 101 FM

0: जब भी बोल तू बोल रे बंदे, पहले उनको तोल, क्योंकि वो बहुत अनमोल है, लेकिन बोल ही खोले बोल
1: बोल।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: खानदान में किसी फर्द की वफात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल जरूरी है ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है। नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं। अस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफी का शनाख्ती कार्ड लेकर अस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें। इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी। वफात के 30 दिन के अंदर अस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान। निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बाकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त आपकी पहचान।
2: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, दी अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
3: हमसे है रोशन ये जहां,
4: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के हवाले से तकनीकी सतह के मुसाकरात में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हुए हैं। साबिक वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 73वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने बलदियाती इदारों की सतह पर तआवुन में इजाफे पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल मलेशिया में खेली जाने वाली तीसरी एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। खबरें तफसील के साथ।
1: We'll be back after this short commercial break.
2: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन। हमसे

0: وصلى الله على نور.
1: ये है FM 101 आपकी समातों के संग. आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात.

0: This is FM 101.
1: बुजुर्गों के कलाम में बहुत सारी चीजें मुश्तरक हैं, जहां वो प्यार और अपने रब के साथ यूनिसन का पैगाम देते हैं, वहां सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और नथिंगनेस की बात भी करते हैं, यानी अपने आप को पहचानने की कोशिश। इंसान अपने आप को बड़ी तोप चीज समझता है, लेकिन जैसे जैसे शऊर की मंजिलें तय करता है, अपने असल मकाम से आगाह होने लगता है। कुछ ऐसा ही कलाम

0: वेलकम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के हवाले से तकनीकी सतह के मुजाकरात में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हो गए हैं। एक मारूफ अमरीकी मीडिया इदारे के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे में पाकिस्तानी क़यादत की नुमाया किरदार की बदौलत पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज बन गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने बलदियाती सतह पर बाहमी तआवुन को फरोग देने पर इत्तफाक किया है। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 6 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। अब खबरें तफसील के साथ।
1: This is FM. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot.

दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म अपने वफ़द के हमराह स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए हैं, जहां इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म अपने वफ़द के

0: وصلى الله على نور.
1: ये है FM 101 आपकी समातों के संग. आप सुन रहे हैं मुहर्रम अल हराम की

0: 台湾 FM。
1: मौजूदा सामेईन आप FM 101 इस्लामाबाद से मुहर्रम अल हराम की खसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

0: सुपहर के 3 बजे हैं, ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म अपने वफ्द के हमराह इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के हवाले से आला सतह के मुज़ाकरात में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए हैं। एक मारूफ अमरीकी मीडिया इदारे के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे में पाकिस्तान अपनी क़यादत के नुमाया किरदार की बदौलत आलमी तवज्जो का मरकज बन गया है। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए मुख्तलिफ वज़ारतों डिवीजनों और महकमों से मुतालिक 89 मुतालबात ज़र की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब ने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सियासी खिदमात पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है। भारत में बीजेपी की हिंदुत्वा क़यादत मुसलमानों की तारीख और शनाख्त मिटाने के दर पर है। फीफा वर्ल्ड कप में आज ग्वादेलोप में खेले गए मैच में जापान ने ट्यूनिस को 4-0 से शिकस्त दे दी।
1: This is FM 101.
2: There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot.

0: 101 FM।
1: मौजूद सामिन, आप सुन रहे हैं FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से मुहर्रम अल हराम की खसूसी नशरियात।

0: 101 FM।
1: सामिन, आप FM 101 से मोहर्रम उल हराम की खसूसी नशरियात सुन रहे हैं।
2: कोक स्टूडियो सीजन 10।

0: 湾 FM。
1: मौजूद सामिन आप सुन रहे हैं FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज से मुहर्रम अल हराम की खसूसी नशरियात।

0: corazón.
1: Sunt Rei FM 101.
2: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ़ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन कौंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
3: This is FM 101.

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: दिस इज FM
3: 101। सुनते रहिए FM 101।
4: मौजूद सामिन, आप सुन रहे हैं FM 101 इस्लाम आबाद स्टूडियो से मुहर्रम उल हराम की खसूसी नशरियात।
5: ये है FM 101, आपकी समातों के संग। आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खसूसी नशरियात। ये है FM 101, आपकी समातों के संग। आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशरियात।

ईरान में अगर आप देखें तो उनकी तरफ से खारजा हैं, उनके स्पीकर हैं, जो कि पहले भी इन निगोशिएशंस का हिस्सा रहे हैं।

0: 101 FM।
1: मौजूद सामिन, आप सुन रहे हैं एफ एम 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से मुहर्रम उल हराम की खसूसी नशरियात।
2: मेरा दिल

0: 101 FM।
1: मौजूद सामेईन, आप FM 101 इस्लामाबाद से मुहर्रम अल हराम की खसूसी नशरात सुन रहे हैं।

0: अरे पाकिस्तान मेन रावी रोड लाहौर, फोन नंबर 04237727160 यानी 0423772710 मोबाइल नंबर है 03004142608 यानी 03004142608 ते साडा ईमेल एड्रेस है suleiman.dawakhana@gmail.com
1: जी सोने भैन भ्राओ पता ते फोन नंबर तुसी नोट फरमा लिया ते हुण उड़ीकां मुक गईआं ते मैं तुहाडी मुलाकात करानी आ यूनानी मैडिकल कॉलेज दे साबिक वाइस प्रिंसिपल पाकिस्तान तिब्बी फाउंडेशन दे चेयरमैन ते अवार्डी ऑफ द गोल्ड मेडलिस्ट तबीब हर्बल फिजिशियन जनाब प्रोफेसर सुलेमान साहब नाल। सुलेमान साहब प्रोग्राम च तशरीफ आवरी दा शुक्रिया।
2: सहमा जी ताडा भी शुक्रिया कि तुसी मैनूं इस प्रोग्राम दे जरिए अपने भैन भरावां दी तिब्बी खिदमत दा मौका दिंदे हो ते मेरी दुआ है कि सोना रब मेरी इस तिब्बी खिदमत नूं कामयाबी अता फरमाए ते हर मरीज नूं शिफा याब करे। आमीन
1: आमीन जी सुम आमीन। सुलेमान साहब अज भी मेरे को बहुत ज़्यादा ईमेल्स ने ते एसएमएस ने ते मैं चाहनी हां ते ज़्यादा ज़्यादा एसएमएस ते ईमेल मैं प्रोग्राम दे विच शामिल करां।
2: जी जी जरूर,
1: नहीं ते फिर मैं गल्लां करां।
2: नहीं नहीं तुसी एसएमएस ते ईमेल ही शुरू करो।
1: डरो ना मैं नहीं बोलदी मैं नहीं बोलदी। लो जी सब तो पहले सानू जिहड़ी ईमेल साडे सामने आई है ओ अख्तर महमूद साहब ने तहरीर कीती है।
2: जी जी
1: लिखदे ने कि मोहतरम सुलेमान साहब मेरी उम्र 44 साल है, मैनू 4 साल तो शुगर दी प्रॉब्लम है जिहदी वजह नाल मैनू कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई है। शुगर दी दवाई ते इस्तेमाल कर रहा वा लेकिन फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हुंदी। मैं सोचया है कि एक वारी हर्बल इलाज भी करवा लवां, हो सकदा है कि अल्लाह पाक हर्बल इलाज नाल ही आराम दे देवे। जी सुलेमान साहब।
2: अख्तर साहब, शुगर की मौजूदगी मर्दों को अमूमन असाबी कमजोरी की शिकायत हो जाती है जिहड़ी मुकम्मल तौर पर काबिले इलाज है। रही शुगर की गल तो इस बारे अलहमदुल्ला मैं कहांगा कि हर्बल इलाज शुगर लई बेहतरीन मुफीद इलाज है जिहड़ा मनफी असरात के बगैर शुगर लैवल नूं कंट्रोल रखता है। मेरे भाई, साढ़े हर्बल इलाज की यह खसूसियत है कि सिर्फ शुगर लैवल नूं कंट्रोल नहीं करता बल्कि शुगर की बुनियादी वजूहात मसलन जिगर असाब अंतड़ियां ते लबलबे दी खराबी ते जोफ नूं दूर करदा है जिहदे नतीजे च शुगर कंट्रोल हो जांदी है। इहदे अलावा असाब ते उजलात नूं कुवत मिलदी है, मेदे ते गुर्दे दा निज़ाम ठीक हो जांदा है ते मरीज़ इक खुशगवार तब्दीली महसूस करदा है। मेरे मोहतरम भाई, मैं तुहाडे लई इक अजमुदा दवाई तरतीब दित्ती है जिहदे नाल शुगर भी कंट्रोल रहेगी ते तुहाडी असाबी कुवत जिहड़ी है ना उह भी बहाल हो जाएगी ते तुसी शुगर दे बावजूद एक पुरसकून पूरे इतमाद ते खुशगवार लाइफ गुजार सकोगे।
1: जी मेरे मोहतरम, तुसी प्रोफेसर सुलेमान साहब दी राय सुनी, हुण तुसी इस मशवरे ते अमल भी करना है, रब करम करेगा। सुलेमान साहब
2: जी जी,
1: शुगर यानी मिठा ते खुशी दी एक खास चाशनी है जेडी खुशी दे रंग नू दुबाला करदी है
2: जी।
1: लेकिन शुगर दी बीमारी एंडी कौड़ी जेडी जिंदगी दी मिठास नू खत्म ही कर दिंदी है। अल्लाह पाक एहो जी शुगर तो हर किसी नू बचाए। आमीन
2: जी आमीन तो सुमा आमीन। सहमा जी, ए बीमारी वाकई बहुत खतरनाक है लेकिन अफसोस नाल कहना पैंदा है कि अक्सर लोग इस बीमारी च प्रॉपर इलाज ते प्रॉपर परहेज नहीं करदे जिंदी वजह नाल बीमारी च पेचीदगी आ जांदी है।
1: ए रवैया बहुत ही खतरनाक है, हर किसी नू अपनी सेहत वल पूरी तवज्जो रखनी चाहिदी है।
2: जी
1: सुलेमान साहब, अगला ऐसे मैं सानू निसार पट्टी साहब ने तहरीर कीता है।
2: अच्छा।
1: पर मानदे ने मेरी उम्र 24 साल है, 2 महीने तो मेरा वजन बतदरीज घट रहा है, हालां मैं बहुत चंगी गिज़ा खाना वा लेकिन गिज़ा दे मुकाबले च मेरी सेहत बहुत कमजोर है। मेरा चेहरा पिचकिया होया लगता है, हड्डियां नजर आंदियां ते जिस्म विच हर वेले थकन ते कमजोरी महसूस हुंदी है।
2: जी
1: सुलेमान साहब, कोई चंगी जिही दवाई पार्सल कर दिओ।
2: बेटा जी, ताड़ी उम्र दे अक्सर बच्चियां नूं इहो जी प्रॉब्लम हो जांदी है जिहड़ी प्रॉपर इलाज ना होण नाल बहुत सारे तिब्बी मसाइल नूं जन्म दिंदी है, लिहाजा मुकम्मल इलाज जरूरी है। बेटा जी, मैं ताड़े लई जिहड़ी दवाई पार्सल कराई है वह दवाई मेरा मामूले मतब नुस्खा है जिंदे नाल हज़ारां नौजवानों नूं अलहमदुलिल्ला सेहतयाबी हुई है। तुसीं इह दवाई 2 हफ्ते इस्तेमाल करनी है, इहदे नाल यूरिन इन्फेक्शन दूर हो जाएगी ते असाब ते पठियां नूं ताकत मिलेगी ਅਤੇ ਗਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਜੁਜ਼

0: 101 FM
1: وصلى الله على نور.
2: ये है FM 101 आपकी समातों के संग. आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात.

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत अमरीका ईरान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आलमी अमन के लिए एक अहम और बेहतरीन मौका है। वज़ीर आज़म ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने स्विट्ज़रलैंड में अमरीका ईरान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के मौके पर अमरीकी और ईरानी वफूद से अलग अलग मुलाकातें की हैं। नायब वज़ीर आज़म और मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने आज काहिरा में एक मुलाकात में दिफा और सेहत समेत मुतअद्दिद शोबों में तआवुन को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अदा किया है। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़राए ख़ारिजा ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम किया है। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आलमी अमन के लिए एक अहम और बेहतरीन मौका है।
1: This is FM 101 FM 101 FM।
2: I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her, true. I have a faith in my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I
3: on you. 101.

0: 101 FM.
1: وصلى الله على نور.
2: ये है FM 101 आपकी समातों के संग. आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात.

0: 101 FM।
1: मौजूद सामीन, आप सुन रहे हैं FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से मुहर्रम अल हराम की खसूसी नशरियात।

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ईरान और अमरीका दोनों अपनी कोशिशों में मुखलिस हैं और हकीकी तौर पर मशरिक़ वुस्ता में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़राए खारिजा ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम किया है। नायब वज़ीर आज़म और मिस्री वज़ीर खारिजा ने आज काहिरा में एक मुलाकात में दिफा और सेहत समेत मुतअद्दिद शोबों में तआवुन को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया है। आज रात मैनचेस्टर में ख़वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 6 विकेटों से हरा दिया है।
1: This is FM 101.
2: मौजूद सामिन, आप सुन रहे हैं FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से मुहर्रम अल हराम की खसूसी नशरियात।
3: ये है FM 101, आपकी समातों के संग। आप सुन रहे हैं मुहर्रम अल हराम की खसूसी नशरियात।

0: 101 FM.
1: وصلى الله على نور.
2: ये है FM 101 आपकी समातों के संग. आप सुन रहे हैं मुहर्रम अल हराम की खुसूसी नशरियात.

0: 101 FM।
1: मौजूद सामिन, आप सुन रहे हैं FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से मुहर्रम अल हराम की खसूसी नशरियात।

0: 101 FM.
1: मौजूद सामिन, आप सुन रहे हैं FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज से मुहर्रम अल हराम की खसूसी नशरियात।

0: और अगर उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया और सूरज और चांद को किसने तुम्हारे जेरे फरमान किया तो कह देंगे अल्लाह ने, तो फिर ये कहां उल्टे जा रहे हैं।
1: अल्लाह।

क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सबको अल्लाह ने तुम्हारे काबू में कर दिया है और तुम पर अपनी जाहिरी और बातिनी नेमतें पूरी कर दी हैं। और बाज़ लोग ऐसे हैं कि अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, ना इल्म रखते हैं और ना हिदायत और ना किताब रोशन।